लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सती यज्ञ विभूषिताय गौरीशताय गण

सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

प्यार चाहिए ना पैसा चाहिए ना ही प्यार चाहिए जैसी मासूम का प्यार चाहिए ना पैसा चाहिए ना ही प्यार चाहिए

0: दारू के गाड़ी चला रहा था। मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।

प्यार चाहिए पैसा चाहिए प्यार चाहिए जैसी मासू का प्यार चाहिए पैसा चाहिए प्यार चाहिए

0: पति की गाड़ी चला रहा था, मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।

0: Hi, I'm Sunday Muncha. Radio Silence 89.8 Megahertz.
1: सुर में गाना सीखे पाधानीसा ऐप के साथ AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।